शहर नोवा इतली 91.4 एफएम रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडल संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टैलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतू एकमात्र प्लेटफॉर्म इतली

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर

धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। ये प्यारी जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा।

वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

नहीं आवे, हवे सदियों जैसे ने कोई पैगंबर नहीं आवे। छे मस्ती खोर किंतु दिल नो छे पत्थर नहीं आवे, सरिता ने कदी घर आंगणे सागर नहीं आवे। चमन ने आंख मां लईने निकळशु जमन माथी, नहीं आवे नजर मां जंगल पाधर नहीं आवे। अनुभव पर थी दुनिया ना तू जो मरशे कयामत मां, तने जोई ध्रुजारी आवसे आदर नहीं आवे। दुखो आव्या छे हमणा तो फक्त बे चार संख्या मां, दुखो आव्या छे हमणा तो फक्त बे चार संख्या मां, भला सी खातरी के ए पछी लश्कर नहीं आवे। हवे तो दोस्तों भेगा मळी वेंची ने पी नाखो, हवे तो दोस्तों भेगा मळी वेंची ने पी नाखो, जगत ना झेर पीवाने हवे शंकर नहीं आवे, दुखी थवाने माटे कोई धरती पर नहीं आवे, हवे सदियों जसे ने कोई पैगंबर नहीं आवे। जलन मात्री द्वारा लखेला कविता अत्यंत दिल ने स्पर्श करे भी छे, अने तमे सांभळी रह्या छो आवी ज कविता। हूँ छु आरजे अंजलि, ने तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहू, व्यस्त रहू, ने सांभळता रहू रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

90.4 मेगाहर्ट्ज पर 95 99 66 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

शहर नवाज इतली 91.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडल संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टैलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतू एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

0: एडवोकेट जेटली।
1: हाँ
0: हूँ डॉक्टर सितांशु मेहता बात करूँ छू। या आई एम फाइन। ना ना नोटिस नो जवाब नहीं आपवानो। मारे मारी संस्था नो ट्रस्ट बनावानो छे। ए हूँ तमने पछी एक्सप्लेन करीश। प्लीज तमे पेपर्स रेडी राखो। हाँ हूँ सांजे आवीने सही करी जईश। ओके थैंक्स।

लूसी बन जाएगा। ये प्रतिज्ञा है पेड़ की, यही वचन है नदी का, आकाश का, हर चीज का। पछी हमने बधाने उद्देशी ने कहे, जिसे तुम बेजान समझते हो वे सब हमसे कई ज्यादा जिंदा है। लूसी हत प्रत बैठी सांभरती रही अने धीमे थी मात्र बे शब्दों बोली शकी। ओ नो, तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर ध्रुव भट्ट लिखित तत्त्वमसी। क्यांय जता नहीं, जोड़ायेला रहो रेडियो पालनपुर साथी।

0: थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

सुरेश ठाकर लिखित सौम्य तेजस्विनी पुस्तक ना अंशों ने। आपणे हिंदुओ कोई पण नदीने गंगा यमुना अने सरस्वती कहीए छीए एम हिरण कपिला अने सरस्वतीना प्रत्यक्ष संगम पर आजे आ भव्य मंदिर छे अने ते वेदोथी सुविदित छे। पौराणिक कथा प्रमाणे सूर्यने 16 कळाओ हती, तेनु तेज आ प्रदेशने तेजस्वी बनावतु रह्यु।

सौम्य तेजस्विनी पुस्तक डॉक्टर गिरीश भाई ठाकर द्वारा लिखित सोमनाथ की पृष्ठभूमि में ज्या वार्ताओ ए ऐतिहासिक घटनाओं स्वरूप समायेली है दर्शावे अंशो थकी हूँ आरजे ए आर रेडियो पालनपुर पर तमने संभळावी रह्यो छुं। आ पुस्तकना वाचिकमने याज्ञ वल्क्य प्रथम प्रकरण ब्रह्मतेज थी जेनु ललाट प्रकाशमान छे मस्तकमां रहेल ज्ञाननो प्रकाश अंगे अंगथी प्रस्फुटित थई रह्यो छे। माथे काळी भंवर जटा जाणे गंगाजीने पोतानामां समावी लेवा सिद्ध होय एवा भगवान शंकरनी जटा फक्त चंद्रबिंब रहित शोभी रही छे। जेनो शब्दे शब्द मंत्र बनी जाय एवो ब्रह्म वर्चस्व नक्षीक अंगोमांथी प्रकट थई रह्यो छे अने एवा ज्ञानोपासक तपस्वी युवान गुरुश्री शाकल्यना आश्रममां विद्योपासनामां तन्मय छे अने एक दिवसे मंगल प्रभाते गुरुनो आदेश संभळाय छे। याज्ञवल्क्य आजे तारे मंत्राक्षत पुष्पांजलि वगैरे लईने राजप्रसाद जवानुं छे। केम गुरुजी कई विशेष छे? अरे वत्स तू नहीं जानतो आपना राजा जी दररोज प्रभाते आपना एक शिष्य ने आमंत्रे छे। राजा जी गुणग्राही ज्ञान पिपासु लागे छे? ना वत्स साव एम तो नथी। पण जी गुरुजी पण शु पण आपणो ज्ञानी शिष्य प्रभाते राजा ने आशीर्वाद आपवा जाय अने तेना आशीर्वादना प्रभावथी राजानो प्रताप राजानो वैभव राजानो ऐश्वर्य वधु उज्ज्वल बने एमज ने? हा वत्स तू बरोबर समझी गयो। हा गुरुजी पण मने खेत पण थयो छे राजा ज्ञानोपासक नथी प्रभावोपासक छे। वत्स अही विवाद ने अवकाशित नथी मारे दररोज एक तेजस्वी शिष्य राजा ने आशीर्वाद जल अक्षत पुष्प लेने मोकलवो एवू निर्धारित थयेल छे। गुरुजी अविवेक क्षम्य गणशो पण आ कार्य माटे हूँ केम पसंदगी पाम्यो? केम पसंदगी पाम्यो सवालनो जवाब आपणे माणीशुं अविराम बाद। त्यां सुधी मस्त रहो व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

0: गया।
1: शहर नो आवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडल संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आ शहर नी पोतानी ओळख, आ शहर नी पोतानुं टैलेंट, युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतुं एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर। सांभळता रहो, मस्त रहो, खुश रहो। 90.4 FM।